एक्सका एफ एम कौआ ओरंग पंगम तेनकुछू आउंग प्रोग्राम को से उजी से का के रदो कुसी रे कौआ ओरंग एम तन छोंगवा उनको ऐसा अंजिमा का के ओरंग कोंगा अले को प्रोग्राम उनको ऐसा कवि सी गंग कोंग का के रदो कुसी रे कोंग कौआ नेहमनी टेकन को सुपा मोंग टोंग ओरंग ए तेनकुन आ चितवा के मासी रे का उआ लुंगसा agawala pangam ko chungwa da wala ngam ha jitaba kwa de ka wa ker ka maso he ke perkera wa chike mtan chungwa ola ngaji cha ngkwe sa ko ji chike maungwa maso tan du ta ngwa ola ngwa